एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर भरन जात अर पात नहन जिहन रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत केहन अचल मूरत अन भाव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहे साहण गण जैन त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत त्वय सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम भरनत सुमत सत जुगत माण्यो शलयो बल बावन पायो त्रित तय माण्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतारथ कियो उग्र सैन कौराज अपय भगत है जन दियो काल युग परमान नानक गोर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अबिचल अटल आदि पुरख फुरमायो मन कुचजे अमावन डोसड़े हाओ क्यों सौ रावण जाओ जियो मन कुचजे अमावन डोसड़े हाओ क्यों सौ रावण जाओ जियो एक दो एक चढ़ंदिया कौन जाने मेरा नाव जियो जिन्नी सखी सौरावया से अंबी शावड़ी है जियो से गुण मंज नयावनी हों कह जी दोस्त रेओ जियो क्या गुण तेरे वित्तरा हूँ क्या क्या किन्ना तेरा नाओ जियो एक तटोल न अंबड़ा हूँ सद कुर्बान तेरे जाओ जियो सोए ना रूपा रंगला मोती ते माणक जियो से वस्तु सह दितियां मैं तिन स्यों लाया चित जियो मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की तेरास जियो हाँ इन्नी टोली भुली अस तिस कंत न बैठी पास जियो अंबर कुंजा कुरलियां बग बहठे आए जियो सा तन चली सोहर क्या मोह देसी अग जाए जियो सती सती चाल थिया भुली वाटड़ी आस जियो तै सह नाल मुती अस दुखा को तरी आस जियो त
ਤਦ ਗੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਅਵਗਣਾ, ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ। ਸਭ ਰਾਤੀ ਸੋਹਾਗਣੀ, ਮੈਂ ਡੋਹਾਗਣ ਕਾਈ ਰਾਤ ਜੀਓ। ਕਰਮਹੀਣ ਤਨ ਕਰੈ ਬਿਨੰਤੀ, ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਵਾਰੀ। ਸਭ ਸੋਹਾਗਣ ਮਾਣ ਰਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੇਵਹੁ ਰਾਤ ਮੁਰਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵਾ, ਚੇਰ ਭਏ ਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਲਿਖੈ ਕਤ ਹੈ ਨਾ ਛੂਟੀਐ, ਖੇਨੋ ਖਿਨ ਭੁੱਲ ਨਹਾਰ। ਬਖਸਨਹਾਰ ਬਖਸ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਸੁਕਹੁ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਿਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰ ਸੋਹੋਂ ਕੁਰ ਸੋਹੋਂ ਚਟੀਐ। ਤਦ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ। ਸਤਨਾਮ

महला पहला सुरत शबद साखी मेरी संगी बाज लोक सुने पत चोली मंगण कताई पीखिया नाम पड़े सुरत शबद साखी मेरी संगी बाजे लोक सुने पत चोली मंगण कताई पीखिया नाम पड़े।

गोरख सो जिन गोए उठाली करत बार न लागे रहे पानी प्राण पवन बंद रखे चंद सु

सिद्ध साध के हर जोगे जंगम पीर पुरस बहुत रे जेतन मिला तकीरत आखां तो मन सेव करे कागद लून रह कृत संग पानी कमल रह ऐसे भगत मिलह जन नानक तिन जम क्या करै।

खेत जो मांडियो सूरमा अब जोजन अब जोजन को दाओ अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपने तन मन होए निहाल जागुर देखा सामने तन तन श्री गुरु रामदास जी महाराज तन तन सा

गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की।

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवयो बाच बेनती चाओ पाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित की इच्छा ताब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दे मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिखियो सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिया सब बैरन का वाज संगरिया पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ते आऊं जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख्यो हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दै मुझे उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज जू करिया हो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाये प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दस कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षण उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पलमो वध कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पार कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै काट काट के पट पट की जानै जब उद करख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कबहू तुम मैं मिलत देह तर सबहू जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै आप आपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत पेदा जाको पेव न पावत बेदा ताकौ कर पाहन अनुमानत महामूड काछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न।

दोस्त दोखते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने। ओ राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक न माने। ओ सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद, कहें हम एक न जाने। ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तो हे बखाने। ओ दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै, गहो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज आस।

खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। आपै दोष ना देई करता, जमकार मुगल चढ़ाया। एती मार पई कर लाने, तै की दर्द ना आया। जब बाण लाग्यो तब रोस जाग्यो, करं लै कमाणं अनं बाण ताणं। आस कृपान खंडो खड़ग, तुपक तबर यार तीर, सैफ सरोही सह थी। यह हमारा पीर, जाओ ताओ प्रेम खेलन का चाओ। सिर तार तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरी जै। सिर दीजै कान न कीजै, कबीर मोहे मरने का चाओ है। मरौं त हर कै द्वार, मत हर पूछे कौन है। परा हमारे बार, डिठे सबे थाब नहीं तुद जेहा। बदो हो पुरख बिदाता, ता तू सोहया। अंदर सच्चा ने हो लाया, प्रीत में आपने तन मन होए निहाल। जा गुर देखा सामने, सो कहो टल गुर सेविया। अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु का। जन्म मर

हमें अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शॉड बिखै बिख खाई, माया मोह भरम पै भूले, सुत धारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियों गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर राम दास राख हो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर राम दास राख हो सरनाई। सो कह टल गुर सेवी एहनस सहज, दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख। ओ सिफत खस

सहा मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पात साहो सिर सहांद जिस पास बैठिया सोही सबनांद सज्जन सच्चा पात साहो सिर सहांद जिस पास बैठे

मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम देवायो।

0: जल थल जियां पुरियां लोआ कर आकार ओए जाके सो तू है जाने तिना भी तेरी सार नानक भगता पुख सलाहन सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती
1: मिट्टी मुसलमान की पेड़ पी कुमार कड़ पांडे इटा किया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे ग्यार नानक जिन करते कारण किया सो जाने कर तार पौड़ी।

दारू पीस माहे कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे। नानक कह सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी।

0: पढ़ पढ़ गड्डी लेती है पढ़ पढ़ प्रिय साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डी है खात पढ़िए जेते बस बस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आरजा पढ़िए जेते सास नानक लिखे एक गल होर हों मैं चखना चाक महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया बहु तीर्थ पव्या ते तुलव्या बहु पेख किया देही दुख दिया सहवे जिया अपना किया अन ना खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया बस्तर ना पहरे ऐनिस कहरे मोन बिगुता क्यों जागे गुरबिन सुता पागो पे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई विण नावे किछ थाए ना पाई रहे बेवाणी मड़ी मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आस अंदेशे तेने केवल हौ मैं शब्द जलाए पौड़ी।

0: जाई लेके आ रहा हो, जात में जोत जोत में जाता, अकल कला भरपूर रहा। तू सच्चा साहिब सिरस वाले जिनकी थी सो पार पया, कहो नानक करते किया बाता, जो किश करना सो कर रहा। महला दूजा
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं शूर शब्दं सूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्द।

0: जगत उदारण नव निदान भगत भव तारण अमृत बूंद हर नाम विष की बिखे निवारण सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागे ते मुक्ते पे सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल उचर ते शब्द निशान बजायो गुर रामदास कल उचर ते शब्द निशान बजायो।
1: हमें दृष्ट शुभ कर हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध और लोभ मोह वश करे सबे बाल सदा सुख मन वसै दुख संसार है खोवे गुर नवनिध दरियाओ जन्म हम कालख धोवे सो कहो टल गुर सेविए एहन सहज सुपाए दर्शन।

0: रसक नानक गुरे राज जोग ते माणियो।
1: सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो, बलह शलन सबल मलन भगत फलन कानपुर नेह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो। राम रवन दुर्त दवन सकल भवन कुशल करन सर्ब पूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो। जरम करम मछ कछ हो ब्रहा जमुना कै कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो। नाम सार ही ये तार तज विकार मन गेंद सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो।
2: तू सतगुर चौ जुगी आप आपे परमेसर सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवंत तुर तुर आद जुगाद अनाद कला तारी त्रोलोए अगम निगम उदरन जरा चमे आरोए। गुरु अमरदास थिर थप्यो परगामी तारन तरन अकंतक बदै न सल कव गुरु रामदास तेरी शरण गुरु रामदास तेरी शरण।
0: ब्रह्मा देख शिव छंद मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोज ते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख्य देव अर दान विक तिल ताको मरम ना पावत प्रिय प्रभ प्रीत प्रेम रस भक्ति हर जनता के दर्श समावत तिस है त्याग आन को जाच है मुख दंत रसन सगल का सजावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत।
3: लंकार आकार अशल पूरन अबनासी हरखवंत अनंतर निर्मल बेगासी गुण गावे बे अंत अंत इक तिल नहीं पासी जाको हो हे कृपाल सो जन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जह कृपाल हर हर प्यो हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोहो थिर हो। तन तन ते तन जन जह कृपाल हर हर प्यो हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोहो थिर हो।
4: श्री गुरु श्री गुरु सत जियो गुर कहा मान निज निदान सच जान मंत्र एह निसबासर हो ए कल्याण लह परमगत जियो। काम क्रोध लोभ मोह जन जन सो साड तो होमे का फंद काट साध संग रत जियो। दे गह त्रे स्नेह चित बिलास जगत एहो चरण कमल सदा सेउ दृढ़ता कर मत जियो। नाम सार ही ये तार तज विकार मन गए अंदो श्री गुरु सत जियो।
5: अंत न पावत देव सबै मुन इंद्र महाशिव जोग करी हुन भेद बिरंच विचार रहे हो हर जाप न छाड्यो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत श्रेष्ठ निहाल करी रामदास गुरु जग तारण को गुरजोत अर्जुन माहे तरी रामदास गुरु जग तारण को गुरजोत अर्जुन माहे तरी।
6: सतगुर खेमा तानिया जुग जूस समाने अनपो ने जा नाम टेक जित भगत अगाने गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने एहो।

माया मोह परम पै भूले सुत दारा से उपरी एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत ते

एहन ससहज सुभाय, दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी, तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी। सजन सच्चा पातशाह सिर सहांदे, जिस पास बैठिया सोही है सवना दा विसाह। सजन सच्चा पातशाह सिर सहांदे, जिस पास बैठिया सोही है सवना दा विसाह। सतनाम।

जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राखे, ज्यों बारिक पित माता आन दिन नानक नाम त्याय, जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राखे, ज्यों बारिक पित माता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा, जी जंतर सब तिसके किए, सोई संत सहाई अपने सेवक की आपे राखे, पूरन भई।

करें, साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी। सो सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म लाए सी, हुक्म ना हुए परवार दा खसमे का महल पाए सी। खसमे पावे सो करे मनहो चुकया सो फल पाए सी, तां दरगह पैदा जाए सी, तां दरगह पैदा जाए सी।

0: गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तर ना जाई तोती टिका ते जप मारी तान मले शान खाई अंतर पूजा पड़े कते बा संजम तुरका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जय तरंदा महला पहला
1: मानस खाने करे निवाज छुरी वगायन तिन गणताग तिन कर ब्राह्मण पूरे नादुना ब्यावे ओई साध कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करें आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया परपूर मथे टिका तेड़ तो तीक खाई हाथ छुरी जगत कसाई नील बस्त पैर होवे परवान मलेश तान ले पूजे पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देखे चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़े यार मत पिटै वे मत पिटै एव अन असाडा पिटै तन पिटै फेड़ करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच ते आई है सुच होवे ता सच पाइए पौड़ी चित्ते अंदर।

दल भंजन गुर सूरमा वड जोदा बह पर उपकारी। ऐसे दीन दयाल सतगुरु मीरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। अज दे शुभ दिहाड़े गुरता गद्दी उपर विराजमान होए तिना सतगुरां दा गुरता गद्दी गुरपुरब बेअंत संगता सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे बड़ी श्रद्धा प्रेम भावना नाल मना रहियां हन। यथा शक्त पेटावां अर्पण कर रहियां हन सतगुरु जी मेहरामत करनी सरबत साध संगत दियां हाजरियां तिल फुल पेटावां दर ते परवान करनियां।

जे मुहा का कर्म है कर्म है पितरी दे अगे वस्त सियाणी है पितरी चोर करे बड़ी है।

वारो वार जूठे जूठा मुख वसै नित नित होए खुआर सुचे एना आखी है बहन जे पिंडा तोए सुचे से नानका जिन मन वसया सोए पौड़ी।

बौड़ी आपे ही करना क्यों कला पे ही ते तारी है। देखे किता अपना आदर कच्ची पक्की सारी है। जो आया सो चलसी सब को ही आई वारी है। जिसके जी प्राण है जो सहेबन विसारी है। आप रखिए अपना।